0: दुर्गा प्रसाद सेवकोटी कानून चौक साहब सुनखानी सुनसारा सुदामा की नारी कर चढ़ी भारी विपत्ति ले पति से उचाई विनती कर चिंका पिटर ले गुरु देवता राजा अरुप भला मान सका निगानी खाली हर बंचन कहीं ज्योति समना देव के सौगर मन देव चंगा करकिन मुझे बारी का हर्षित मुलाका मगरी इच्छा वर्तन में विचार मुझे स्तंभ जमा कर दी सोई स्तंभ बली गए प्रयोजित पूछे द्वारिका माँ
1: नारायण
0: जनो बालका ओ जननो बालका ओ जगा

0: रंजीवी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड को 20 साधारण सभा सम्बन्धी सूचना।
1: संस्थाको सञ्चालक समितिको मिति 2083 साल भाद्र 5 गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार संस्थाको 20 वार्षिक साधारण सभा एकाईगत रूपमा सञ्चालन हुने भएको हुँदा सम्पूर्ण शेर सदस्य ज्यूहरूलाई अनिवार्य रूपमा उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ।
0: साधारण सभाका प्रस्ताव तथा छलफलका विषयहरू आर्थिक वर्ष 2082-83 को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत तथा छलफल, आर्थिक वर्ष 2082-83 को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत तथा अनुमोदन,
1: आर्थिक वर्ष 2083-84 को वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत तथा छलफल, संस्थाको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था बारे जानकारी तथा छलफल,
0: लेखा परीक्षक नियुक्ति तथा पारिश्रमिक निर्धारण सम्बन्धमा, संचालक समितिको कार्य सम्पादन तथा प्रतिवेदन सम्बन्धमा छलफल,
1: नयाँ संचालक समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको निर्वाचन, निर्वाचन सम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया तथा निर्णयहरू,
0: संस्थाको विनियम तथा आन्तरिक कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन सम्बन्धमा, साधारण सभाको निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्न शेयर सदस्यको तर्फबाट प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने बारे र विविध
1: साधारण सभा हुने मिति र स्थानहरू। मिति 2083 साल असोज 8 गते भीमेश्वर नगरपालिका 5 विशुनटोल, समय बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म, सम्पर्क मोबाइल नम्बर 97 42 42 75 17। असोज 8 गते भीमेश्वर नगरपालिका 5 घोकशिला, समय दिउँसो 12 बजेदेखि 3 बजेसम्म, सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 44 23 63 23।
0: असोज 9 गते सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 काटाकुटी बोर्डिङ, समय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म, सम्पर्क मोबाइल नम्बर 97 42 42 75 17। असोज 10 गते सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 गाउँपालिका आसपास, समय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म, सम्पर्क मोबाइल नम्बर 97 42 42 75 17।
1: असोज 11 गते सैलुङ गाउँपालिका 6 ढुङ्गे बजार बाघखोर, समय बिहान 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म, सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 44 23 63 23। असोज 11 गते सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 8 कालापानी, समय दिउँसो 1 बजेदेखि 4 बजेसम्म, सम्पर्क मोबाइल नम्बर 97 42 42 75 17।
0: असोज 12 गते सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 8 झोर मन गाउँ, समय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म, सम्पर्क मोबाइल नम्बर 97 42 42 75 17। असोज 12 गते सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 8 सरनथली, समय दिउँसो 3 बजेदेखि 5 बजेसम्म, सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 42 42 75 17।
1: असोज 13 गते सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 8 पाँडेखानी, समय बिहान 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म, सम्पर्क मोबाइल नम्बर 97 42 42 75 17। असोज 13 गते सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 8 भैँसे बजार, समय बिहान 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म, सम्पर्क मोबाइल नम्बर 97 42 42 75 17।
0: असोज 15 गते मेलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 पौटी सभाहल, समय बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म, सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 44 30 77 72। असोज 15 गते सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 भित्रे भन्ज्याङ, समय बिहान 8 बजेदेखि मध्याह 12 बजेसम्म, सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 44 23 63 23।
1: असोज 17 गते सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 महिला भवन, समय बिहान 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म, सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 44 23 63 23। असोज 18 गते

0: बाल गायक अंकित खड्का। मेरो नयाँ गीत बजारमा आउँदैछ, सबैले माया गर्नु।
1: श्रमजीवी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको 20 औं साधारण सभा सम्बन्धी सूचना।
2: संस्थाको संचालक समितिको मिति 2083 साल भाद्र 5 गते बसेको बैठकको निर्णय अनुसार संस्थाको 20 औं वार्षिक साधारण सभा एकाईगत रूपमा संचालन हुने भएको हुँदा सम्पूर्ण शेर सदस्यज्यूहरूलाई अनिवार्य रूपमा उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ।
1: साधारण सभाका प्रस्ताव तथा छलफलका विषयहरू आर्थिक वर्ष 2082-83 वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत तथा छलफल, आर्थिक वर्ष 2082-83 लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत तथा अनुमोदन,
2: आर्थिक वर्ष 2083-84 वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत तथा छलफल, संस्थाको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था बारे जानकारी तथा छलफल,
1: लेखा परीक्षक नियुक्ति तथा पारिश्रमिक निर्धारण सम्बन्धमा, संचालक समितिको कार्य सम्पादन तथा प्रतिवेदन सम्बन्धमा छलफल,
2: नयाँ संचालक समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिको निर्वाचन, निर्वाचन सम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया तथा निर्णयहरू,
1: संस्थाको विनियम तथा आन्तरिक कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन सम्बन्धमा, साधारण सभाको निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गर्न चेयर सदस्यको तर्फबाट प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने बारे र विविध
2: साधारण सभा हुने मिति र स्थानहरू। मिति 2083 साल असोज 8 गते, भीमेश्वर नगरपालिका 5 विसुनटोल। समय बिहान 8 बजेदेखि 10 बजेसम्म। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 97 42 42 75 17। असोज 8 गते भीमेश्वर नगरपालिका 5 घोकशिला। समय दिउँसो 12 बजेदेखि 3 बजेसम्म। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 44 23 63 23।
1: असोज 9 गते सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 काटाकुटी बोर्डिङ। समय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 97 42 42 75 17। असोज 10 गते सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 गाउँपालिका आसपास। समय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 97 42 42 75 17।
2: असोज 11 गते सैलुङ गाउँपालिका 6 ढुङ्गे बजार बाघखोर। समय बिहान 8 बजेदेखि 11 बजेसम्म। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 44 23 63 23। असोज 11 गते सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 8 कालापानी। समय दिउँसो 1 बजेदेखि 4 बजेसम्म। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 97 42 42 75 17।
1: असोज 12 गते सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 8 झोर मन गाउँ। समय बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 97 42 42 75 17। असोज 12 गते सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 8 सरनथली। समय दिउँसो 3 बजेदेखि 5 बजेसम्म। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 42 42 75 17।
2: असोज 13 गते सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 8 पाँडेखानी। समय बिहान 7 बजेदेखि 9 बजेसम्म। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 97 42 42 75 17। असोज 13 गते सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 8 भैँसे बजार। समय बिहान 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 97 42 42 75 17।
1: असोज 15 गते मेलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 पौटी सभाहल। समय बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 44 30 77 72। असोज 15 गते सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 भित्रे भन्ज्याङ। समय बिहान 8 बजेदेखि मध्याह बजेसम्म। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 44 23 63 23।
2: असोज 17 गते सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 6 महिला भवन। समय बिहान 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 44 23 63 23। असोज 18 गते सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 7 वडा कार्यालय। समय बिहान 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 44 40 68 24। र असोज 21 गते सैलुङ गाउँपालिका सह संस्थाको प्राङ्गण। समय बिहान 10 बजेदेखि 3 बजेसम्म। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 44 23 63 23।
1: साधारण सभामा उपस्थित शेयर सदस्यहरूलाई कर बाहेक रू 300 खाजा खर्च उपलब्ध गराइनेछ। 2083 साल असार मसान्तसम्म नियमित बचत भएको ऋणको भाका ननागेको शेयर सदस्यज्यूहरूलाई मात्र खाजा खर्च उपलब्ध गराइनेछ। अन्य थप जानकारीको लागि सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 48 28 75 55 98 44 23 63 23। 98475788 सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। रमेश बहादुर सुवेदी, व्यवस्थापक, श्रमजीवी बचत तथा ऋण

समवेदन। रेडियो सैलुङ दोलखाका प्राविधिक प्रमुख प्रदीप सेन्चुरीका पूजनीय पिता दोलखा भीमेश्वर नगरपालिका तीन निवासी पूर्ण बहादुर सेन्चुरीको यही मिति 2083 आश्विन

0: नमस्कार
1: रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम बैठे थोप्ल सात मेगाहर्जबाट म बदे प्रसाद सापकोटा आज विक्रम सम्मत 2083 साल आश्विन कृष्ण पितृपक्ष सन् 2026 अक्टोबर 1 तारीख आश्विन 15 गते बिहीबार पञ्चमी तिथि
0: अब स्तुति गरौं
2: आयु द्रोण कुमार कैसरिया हो साक्षण कल्पय भरी।

राजा नौश का इशारे दौलत ले परिपूर्ण होस पवन जाई नई परे का घरे मन राखुन सबले दुर्योधन समान कर्णई समान दानमा तागत श्री बलराम कैसरी होस सद्वात कई काममा राजा धर्म कुमार कैसरी होस श्री ब्रह्म ज्ञान आने विदुर कैसरी ज्ञान होस सुजनमा मानुन बढ़ाले पनि कृति उज्ज्वल होस सुत सहित

0: वासुदेवाय नमः। हरि परमात्मा।
1: मेरो नाम सुविधा पोखरेल, जफैबाट आको म। एउटौ शंख कपाल भूषित करौ, मालस्ती माला धरौ, देवौ द्वारौ तिस्मशान ननिलौ, नागरी गोवर्धनौ, तिरिदक्षे बलिदक्षे।